0: Thank you. Thank you so much.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Problem of Plenty का नाम तो आपने सुना ही होगा. ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं हम. We all feeling like Indian selectors right here in the UAE, right? मतलब अभी तो सेकेंड डे ही हुआ है, यानी कि वेंसडे है, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. क्या करेंगे इतने सारे दिन छुट्टियों के? अगर आपने कुछ धांसू प्लान किया हुआ है, that's what the deal is. Give me a call. Let me know. शेयर करने से केयर बढ़ता है. या 800-1062 इज द नंबर. यू कैन गिव मी अ कॉल. यू इफ गॉट सम अमेजिंग प्लान्स फॉर द अपकमिंग यू नो वीकेंड, या फिर ये लंबी छुट्टियों में आप क्या कर रहे हैं, यू कैन शेयर दैट विद अस. एंड प्लस इफ यू गॉट अ रिक्वेस्ट, इफ देयर इज अ सॉन्ग दैट रियली गेट्स यू अप एंड रनिंग, इफ यू ऑन अ लॉन्ग ड्राइव राइट नाउ एंड यू वांट अ रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट सॉन्ग वाइल ऑन दैट लॉन्ग ड्राइव, गिव मी अ कॉल. 800-1062. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle A1, ए मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
2: बिग 106.2

0: आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव डॉट ए।
2: कौन है जो सड़कों पे आया? अब इतनी यार मत, छुट्टी की दिन इतने सुबह सवेरे कौन ट्रैफिक बचा रहा है यार? लेकिन कोई तो है जो अन्नादर डिजिन वन पर ट्रैफिक मचा रहा है ऑन दिस सेकंड डे ऑफ द ईद की छुट्टियां। E11 की मैं बात कर रहा हूँ, हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा इन द सेम डायरेक्शन ऑन 611 एमिरेट्स रोड भी थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। एंड दिस इज गोइंग साउथ टूवर्ड्स अल अवीर। 311 पर एज यू हेड आउट ऑफ सिटी सेंटर जाइए, थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 3-4 मिनट का डिले आपको मिलेगा। एंड E44 का थोड़ा बहुत ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप अलखेल रोड गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस वे। इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमी और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
2: बिग 106.2

खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: हाय, आई एम नेहा। ऑनेस्टली मुझे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने में हमेशा थोड़ी हेजिटेशन होती है। मेरा कंसर्न था क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिलेगा, कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे। मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड। नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस। आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माय ओल्ड गोल्ड, और मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी।
1: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे। The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
3: The bowler runs, delivers, and there it is, caught, bowled, run out or stumped. How's that? Live the moment of every How's that of the Tata IPL.
1: Brought to you by GWM Premium SUVs.
3: Exclusively on the FunAsia Network.
4: An experience shaped around you with Fly Dubai. Different paths, different dreams, all shaped by the same moment. This is where every journey becomes a story worth telling. A story that begins with Fly Dubai.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ, यू फाइंड दो तीन मिनट की देर, देन देयर इज 44 पर अलखेल रोड गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे, हल्का फुल्का कंजेशन इज बिल्डिंग अप ऑल्सो 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे. मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड. नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस. आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माय ओल्ड गोल्ड, और मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी.
5: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे.
6: DeVoe has brought an absolutely unplayable delivery, full off stump line and missing the stumps by a whisker. And what a super delivery that is. Catch the action of every ball on Tata IPL that makes a super delivery with Papa John's.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Get car insurance from insurancemarket.ae. Call or WhatsApp 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
1: Hanji, good morning. Zohra ke saath ho on the big mix.
2: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अब ये टर्म आपने सुना होगा थर्स्ट ट्रैप. ये Gen Z बच्चे आजकल बहुत यूज कर रहे हैं. ये सारे तिलक वर्मा एंड अभिषेक शर्मा, ये सारे नए नए बच्चे जो आए हैं क्रिकेट में, आजकल लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, एक्टर्स को छोड़ के क्रिकेटर्स के पीछे. बट इन बच्चे बच्चों को मतलब एक हमारे टाइम के एक्टर ने डिसाइड किया बताएंगे कि ये थर्स्ट ट्रैप होता क्या है ना. हमारे टाइम की भी नहीं है, तो मेरे से भी पुराने टाइम की आ जाती है. ये बूमर कैटेगरी में आता है. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान खान. ही रिसेंटली पुट अप अ पिक्चर एंड द इंटरनेट इज लूजिंग इट ओवर दैट पिक्चर. व्हाट द पिक्चर इज, इट्स जस्ट हिम सिटिंग ऑन अ काउच एंड रिलैक्सिंग एंड ही इज शर्टलेस एंड ही इज फ्लॉन्टिंग हिज एब्स एंड इट लुक्स लाइक ही हैज पोस्टेड दिस पिक्चर फ्रॉम 1995 और 96 बिकॉज ही डज नॉट लुक दैट ही इज 55 समथिंग. एंड इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि ये पिक्चर अभी के टाइम की है. But basically, it is him flaunting his abs, a very, very recent picture that too. But you know, that's not what I want to talk about. ठीक है? Of course, everyone is, applauding कि क्या मेहनत करके बॉडी फिर से बना दी at this age, almost 60 years old. But I want to talk about the caption. बिल्कुल boomer वाला caption इन्होंने डाला हुआ है. Boomer वाले spellings use किए हैं. By I, me, myself, two ways to be by yourself, alone and lonely. Alone is by choice and lonely when nobody wants to be with you. अब इसके आगे you figure out what you need to do. ना सर, ना पैर इस कैप्शन का. I love it. I love how unhinged सलमान खान can sometimes be. But अगर आपने ऐसे ऊटपटांग से कैप्शंस देखे हैं या ऊटपटांग से ऐसे टर्म्स आपके सामने आए हैं, जो मेरे सामने बहुत आते रहते हैं, जेन अल्फा की लैंग्वेज सर के ऊपर जाती है एकदम बाउंसर. दैट इज समथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस आवर. यू विद मी ज़ोहरा ऑल द वे अंटिल 1 राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetour UAE, part of Elite Group Holding, and Fly Dubai.
3: Drive home a brand new Jetour with zero VAT and EMIs starting from just 966 dirhams per month. Buy now and pay after 6 months. T's and C's apply.
2: Big 106.2 wishes all its listeners a blessed Eid al-Adha. Wishes of peace and prosperity for all. Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
5: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: हांजी, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द ईयर आपने सुना, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae, जिसके थ्रू यू गेट द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ. यस, दैट्स डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल टू योर फेस. स्टार्टिंग एट जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ, ये प्राइस सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है इन द यूएई. नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव टू यू नो गो थ्रू. सो जस्ट पिक योर कार अप एंड गेट ड्राइविंग. दिस इज selfdrive.ae. आप सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप को. सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Dubai, get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4, featuring Gippy Grewal, Sargun Mehta, Binu Tillon, and Karamjeet Anmol, live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 PM onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
1: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. Aur maine apne liye beautiful diamond jewelry bhi khareedi.
2: Visit your nearest Tanishq store today.
3: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर हेडेड टुवर्ड्स शारजा, E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, लाइट ट्रैफिक मिलेगा वर्का 2 के पास, अबाउट अ 5 टू 6 मिनट डिले ऑन दैट रोड. E44 रासल खोर रोड, D3 के पास आपको मिल जाएगा द यूजुअल थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक, अबाउट अ 5 टू 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड इज वेल. D85 बनिया स्ट्रीट पे मोटर ट्रैफिक है, 8 मिनट का वहां पर डिले नजर आ रहा है. ऑल्सो इफ यू आर अराउंड D83 रबात स्ट्रीट, वहां पे व्हीकल ब्रेकडाउन की वजह से आपको 6 से 7 मिनट का डिले मिल सकता है. लाइट से मोटर ट्रैफिक है, नॉट वेरी बिजी. एनी अदर अपडेट आप हमें बता सकते हैं 4305 पे.
3: Drive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get car insurance from insurancemarket.ae. Call or WhatsApp 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: You know, this is a very good question someone asked me because not many people are talking about this. Eid pe kya banta hai? Sabko pata hai. Meetha ban raha hota hai, sevaiyan, sheer kurma, biryani ban rahi hoti hai. Without biryani, it is incomplete, hai na? Any Eid is incomplete. In fact, I even tried breaking that stereotype once. As a family, we collectively decided ki is baar hum biryani nahi banayenge. Is baar, you know, dal, chawal, fish fry, chicken fry, aise kuch bana dete hain. But impossible hai yaar ye, matlab bina biryani ke is just not Eid, and it feels very very incomplete. We've tried it and it didn't feel like Eid at all. So yeah, biryani is a must. But one question someone asked me is that what is the one item that is always left over after Eid lunch? Not one item, I would say biryani is that item itself. Except why and how it is left over. बिरयानी ईद की जो होती है सब ऐसे ढूस ढूस कर खा रहे होते हैं कि सब उसका जो चिकन मटन जो कुछ भी होता है ना सब खा जाते हैं, बचता है सिर्फ उसका चावल. बिरयानी के जो चावल बचते हैं ना वो मतलब पूरे हफ्ते भर के लिए चल जाते हैं, बिकॉज पीपल हैव फिनिश्ड द मेन आइटम एंड हैव लेफ्ट द राइस इन इट. तो उसी राइस को बार बार खाया जा रहा होता है, उसमें एक्स्ट्रा वाइट राइस मिला मिला कर खाया जा रहा होता है. दिस इज समथिंग दैट एटलीस्ट वी डू. क्या आपके घर पर भी ऐसे होता है कि बिरयानी बनी एकदम फ्रेश फ्रेश और उसका जो अंदर का सामान है, माल है, वो खत्म हो चुका है और बस चावल बचे हैं और जिनकी पूटी किस्मत उनको सिर्फ चावल खाने को मिलता है रायते के साथ? एज दिस हैपेंड विद यू टू, लेट मी नो 800-1062 पे. इन द मीन टाइम कीपिंग यू कंपनी.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. This Eid, the celebration gets bigger at GWM. Join the GWM Carnival from 28th to 30th May at the all-new GWM Sheikh Zayed Road Showroom from 4 p.m. to 8 p.m. Discover cash discounts, exciting referral rewards, and win 10 grams of gold. Come with your family, explore the latest GWM.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: डोसी
1: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव डॉट ए
2: ट्रैफिक का हाल फिलहाल इफ यू आर हेडेड टुवर्ड्स शारजा E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लाइट ट्रैफिक मिलेगा वर्का 2 के पास अबाउट 5 टू 6 मिनट डिले ऑन दैट रोड E44 रसल खोर रोड D3 के पास आपको मिल जाएगा द यूजुअल थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक अबाउट 5 टू 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड इज वेल D85 बनिया स्ट्रीट पे मॉडरेट ट्रैफिक है 8 मिनट का वहां पर डिले नजर आ रहा है ऑल्सो इफ यू आर अराउंड D83 रबात स्ट्रीट वहां पे व्हीकल ब्रेक डाउन की वजह से आपको 6 से 7 मिनट का डिले मिल सकता है लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक है नॉट वेरी बिजी एनी अदर अपडेट आप हमें बता सकते हैं 4305 पे
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मतलब पहले पहले जज करना इजी होता था. नाउ दैट आई हैव अ फैमिली ऑफ माय ओन, आई हैव अ ब्यूटीफुल बेबी, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, शायद आई माइट एंड अप डूइंग ऑल दीज थिंग्स. आई वांट टू स्पीक टू वन पर्सन जिसको ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी है. उज्जवल मेरे साथ है. उज्जी, आई एम गोना थ्रो यू अ क्विक क्वेश्चन, ठीक है? ईद, क्लोदिंग, हम अपने अपने कपड़े खुद चूज करते हैं. अ लॉट ऑफ फैमिलीज डिसाइड कि ईद पे हम सब मैचिंग कपड़े पहनेंगे. मम्मी, डैडी एंड बेबी मैचिंग कपड़े.
2: इट्स क्वाइट अ ट्रेंड एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट.
1: इट इज
2: क्वाइट अ ट्रेंड. एंड
1: क्वेश्चन टू यू इज इट क्यूट और क्रिंज?
2: इफ इट्स फॉर द ट्रेंड, इट्स क्यूट. आई मीन इंस्टाग्रामेबल स्टफ एंड यू नो दैट थिंग, और पिक्चर्स शो द वर्ल्ड द फैमिली इज वन, वी आर वन, वी ड्रेस सिमिलर, वी थिंक सिमिलर.
1: इजंट दैट क्रिंज?
2: No, you're just saying
1: अपने,
2: it to the world.
1: अपनी खुशी के लिए आप कर लो तो फिर भी क्यूट लगता है.
2: नहीं,
1: बट
2: आप
1: दिखा
2: रहे हो ना कि भाई हम खाते पीते हैं. रंग शायद मिल जाए फिर भी, लेकिन
1: मैचिंग मैचिंग नहीं.
2: लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिंट्स पहने तो सबने प्रिंट्स, मतलब तीनों एक.
1: अरे आई नो फैमिलीज जो मतलब बाप ने कुर्ता सिलवाया, बच्चे के लिए सेम मटेरियल का लेके सेम स्टाइल में कुर्ता सिलवाया.
2: हाँ, ये बंडल ऑफर टाइप होता है ना, जैसे आपको वॉइस कॉल्स पे मिलता है दो के साथ एक.
1: ओके, सो क्यूट और क्रिंज? मुझे बहुत लोगों ने जज किया, पता है, मैचिंग क्यों नहीं पहनाया, कितना क्यूट लगता तीनों ब्लैक पहनते हो तो.
2: Yeah, again, respect to people who do that and they take an effort in doing that, but मुझे ऐसा लगता है कि क्रिंज इसलिए भी है क्योंकि 600-700 दिरहम और निकल जाते हैं मैचिंग के चक्कर में.
1: Yeah. I 100% agree.
2: So it's a cringe.
1: So it's a 2 out of XYZ right now.
2: It's actually cringe to the pocket.
1: नहीं, ये पैसे बचाने के सस्ते नुस्खे हैं बस. बट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम समवन हु लव्स फैशन, यू नो दैट अबाउट मी ऑलरेडी. एंड आई फील लाइक ये फोर्स नहीं करना चाहिए. अगर ठीक है, नेचुरली आता है आपको एंड यू फील लाइक डूइंग इट योरसेल्फ, ठीक है. बट इफ द अदर पर्सन डज नॉट वांट टू डू इट, बच्चा आपका अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, नहीं फोटो के लिए मैं मैचिंग पहनाऊंगी अपने बच्चे को, आई डोंट थिंक वो करना चाहिए. लेट इट हैपन नेचुरली. इफ इट डजंट, यू लुक क्यूट एनीवे.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा।
1: इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खिलाने पिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रहे थे कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली।
1: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
2: Hey, jaldi hata tera khadana. Jal hata.
3: Haan.
2: Arey, jaldi hata yaar, chunda.
3: Haan.
1: Big Traffic, brought to you by SelfDrive.ae.
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर हेडेड टुवर्ड्स शारजा E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, लाइट ट्रैफिक मिलेगा वर्का 2 के पास, अबाउट अ 5 टू 6 मिनट डिले ऑन दैट रोड। E44 रासलखोर रोड, D3 के पास आपको मिल जाएगा द यूजुअल, थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक, अबाउट अ 5 टू 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड इज वेल। D85 बनिया स्ट्रीट पे मॉडर ट्रैफिक है, 8 मिनट का वहां पर डिले नजर आ रहा है। ऑल्सो इफ यू आर अराउंड D83 रबात स्ट्रीट, वहां पे व्हीकल ब्रेक डाउन की वजह से आपको 6 से 7 मिनट का डिले मिल सकता है। लाइट से मॉडर ट्रैफिक है, नॉट वेरी बिजी। एनी अदर अपडेट आप हमें बता सकते हैं 4305।
1: AE now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: Call or WhatsApp 800-ALFRED. Renewing your registration? Don't forget your insurance first. InsuranceMarket.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हाय, I'm नेहा. Honestly, मुझे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने में हमेशा थोड़ी हेजिटेशन होती है. मेरा कंसर्न था क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिलेगा, कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे. मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. Aur maine apne liye beautiful diamond jewelry bhi khareedi.
1: Visit your nearest Tanishq store today.
2: Big 106.2. That's my song by E. And.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: लखिया लिखी आवाज, द ट्रैक इज सफरनामा। सफर पे हो या फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे हो या अपने घर पे बैठे हुए हो, जो गॉसिप सेशन है, जो गॉस सेशन है वो बहुत कमाल चलता है, स्पेशली ड्यूरिंग ऑल दीज लॉन्ग वीकेंड्स।
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ
0: It's actually not even a long weekend. It's like long break that you've received. And आपकी खुशकिस्मती है अगर आपका पूरा परिवार in the UAE है, और अगर आपके और भी ज़्यादा extended family यहाँ पे है, आपके relatives यहाँ पे हैं, आपके cousins यहाँ पे हैं, तो मतलब अलग ही level की gossiping होती है, अलग ही level का हिसाब किताब होता है। अगर cousins इकट्ठे हो जाएं, तो मतलब वो बेडरूम तो हाउसफुल है ना, 6-7 घंटे के लिए सारे के सारे कजन्स एक साथ, और उसके बाद हा ही हु, उसकी बुराई, कितना मज़ा आता ना अपने रिश्तेदारों की बुराई करने में। एक अलग टाइम है, और चाय का तो अलग ही हिसाब किताब चलेगा। लाइक चाय तो कभी रुकती ही नहीं है, इतनी बारी चाय खुलती है, इतनी बारी आपका जो दूध है वो आता नीचे सुपर मार्केट से, ग्रोसरी से। लेकिन इसका एक अलग चार्म है ना, टू सॉर्ट ऑफ हैव द एंटायर फैमिली टुगेदर, यू नो, टू जस्ट सी द हाउस फिल्ड अप विद सो मच इमोशंस, सो मच लाफ्टर, सो मच फाइटिंग, सो मच क्वारल, सो मच डिबेट, ऑन टू जस्ट नॉट टू योरसेल्फ बट टू द वर्ल्ड अराउंड अस, यू नो, इट जस्ट फील्स सो लाइवली, यू नो। तब एक मकान एक घर लगता है ना, वो शोर शराबा जब तक ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता किसी भी त्यौहार का, स्पेशली ये लॉन्ग वीकेंड और लॉन्ग ब्रेक जो है, इसका कुछ ना कुछ तो हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। एंड आई गेस दिस टॉपिक दैट यू गॉसिप अबाउट इज द बेस्ट टॉपिक। बट वाज द लास्ट टाइम दी एक्चुअली ऑल ऑफ यू वर टुगेदर एंड यू रियली गॉसिप्ड अ लॉट? जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062, व्हिच इज 800-1062, और ड्रॉप मी अ डीएम ऑन माय इंस्टाग्राम दैट दिस वाज वन पॉइंट दैट वी वर गॉसिपिंग, प्रोबेबली योर बुआ, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग। नंदिनी श्रीकर की आवाज में बुआ बहुत बुरा मान जाएंगी, सो आई थिंक आई विल गिव दिस क्वेंचर ऑफ अ सॉन्ग, इट्स कॉल्ड हर जॉइंग आपके साथ अंटिल 3। आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे, वी आर अ पार्ट ऑफ वन एशिया नेटवर्क।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: In this game, every run counts, and that's a single for this game of the Tata IPL. Victories are built one run at a time.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। आप सुन रहे हैं द बिग लाइव। वेल, आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप हंस हंस के यू नो यू फील लाइक ओ माय गॉड, अलग ही पंजाबी माहौल है। गए कैरी ऑन जट्टा दे नाल। वन तुसी देखिए, टू तुसी देखिए, थ्री तुसी देखिए, हुन जेड़ा फोर्थ एडिशन है ऑफ कैरी ऑन जट्टा दैट इज कमिंग सून। यस, एंड यू गेट रेडी टू मीट द ब्लॉकबस्टर स्टार ऑफ कैरी ऑन जट्टा Live in Dubai on 29th of May 2026. Gippy Grewal se aap mulaqat kar sakte hain, Sargun Mehta, Binu Tillo and Karamjeet Anmol. You can catch them live at Global Village main stage on 29th of May from 7 PM onwards. And jo celebration night continues with the official after party at Opus Club Dubai from 11 PM onwards. Event partners, Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion, Cats Entertainment and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bang Squad. Do not miss this madness.

0: You think lifting 5 kilo weights makes you immortal? It doesn't. But life insurance makes you prepared. Insurance Market.
1: Song of the hour, आपने सुना, good afternoon to you. Big 106.2 पे soothing melodies चलती रहेंगी. कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं इस वक्त, if you're on a long drive and you're doing nothing, then the best companion is radio. Big 106.2 पे कुछ ऐसे ही afternoonish आरामदायक गाने चलते हैं afternoon time में. आप सुनना चाहते हैं कोई भी गाना, you can DM me on my personal Instagram mjojwalkhanna, or you can drop in your DM on 106.2 Big FM.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Romantic गाना आपने सुना? Global Village cannot be romantic. It is very excruciating. अगर आपने एक दिन में ठान लिया है कि मैं सब देख के जाऊंगा, पूरी टिकट के पैसे वसूल करूंगा या करूंगी, that is not possible. वो नहीं हो सकता. आपको compartmentalize करना पड़ेगा कि मुझे इतना ही देखना है, इतना ही खरीदना है, इतना ही घूमना है. अदरवाइज आपकी टांगे जवाब दे देंगी और बाकी दो दिन की छुट्टी आपकी जो ऐसी फिजूल में चली जाएगी, है ना, आराम करते करते. So the good idea is you only see the pavilions that you would want to see only if you're planning to go to Global Village during this long break, which perhaps could be places that you've never ever seen. Through the lenses of these pavilions, you will get a little idea of how these countries would look eventually. हालांकि ये सब कुछ shopping spree के हिसाब से बनाए गए हैं सारे pavilions, but एक थोड़ी सी फील तो आई जाती है ना when you go to that a specific pavilion. If not Global Village, then the best idea with the kids is to go to a good theme park. It's been a while that you've not seen a water park. You've not sort of drenched yourself in a water park. Go to a lot of these water parks. एक्साइटमेंट होती है, एक पिकनिक की भी फील आती है और ऐसा लगता है कि हाँ इतने सालों बाद हमने यू नो फन एंड फूड विलेज टाइप का कुछ एंजॉय किया है इन दुबई. नाउ द टिकट्स आर नॉट आई से चीप, दे आर ऑन द हायर साइड, बट यस वी डोंट डू इट एवरी ईयर, डू वी? वी डोंट इवन डू इट लाइक इन टू ईयर्स, एक बारी, दो साल में, तीन साल में. तो अगर एक बारी जा भी रहा है जेब से पैसा, तो जाने दो उसको, है ना. एंड द फन एंड द फीलिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको स्टोरीज मिलेंगी, द इंस्टाग्राम थिंग दैट यू विल गेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पर्सनल मेमोरीज के लिए कलेक्टिवली. और अगर आपका बड़ा झुंड है ना, अगर एक 15-20 जनों का झुंड, ओ माई गॉड, तो फिर तो अलग ही लेवल हो जाएगा वो. थिंक अबाउट इट एज आई गिव यू द नेक्स्ट सॉन्ग इन आपके साथ अंटिल 3. दिस इज द बिग लाइफ टॉकिंग अबाउट दिस लॉन्ग ब्रेक दैट वी हैव गॉट. ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: वेल, आउटडोर की तो बात कर ली, लेकिन अगर इस लॉन्ग ब्रेक में आपको इंडोर्स ही रहना है, अपने घर में ही रहना है, तो कुछ बहुत कूल हाउस गेम्स भी होती हैं जो आप खिला सकते हो. और ये हाउस गेम्स आपको मिल जाएंगी बहुत सारी ऑन इंस्टाग्राम.
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: और हाउस पार्टी अपने आप में बहुत मजेदार चीज है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है. आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड दैट एज व्हेन वी जस्ट वांट टू गो आउट एंड अबाउट. ऑफ कोर्स विद द किड्स यू हैव टू गो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपना सुकून चाहिए, अपना ग्रुप ऑफ गैंग चाहिए, देन द बेस्ट थिंग इज हाउस पार्टी, हाउस गेम्स एंड अ लॉट ऑफ फूड कमिंग इन, चाहे वो कबाब्स हो. आई रियली लव बन कबाब्स. हैव यू ट्राइड बन कबाब्स? आई लाइक बन कबाब्स अ लॉट. देयर आर लॉट ऑफ गुड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स व्हिच सर्व यू ब्रिलियंट बन कबाब्स, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो चिकन बन कबाब्स हो या मटन बन कबाब्स हो. यू नो, डू अ लिटिल बिट ऑफ दीज प्लैटर्स एंड दैट्स अबाउट इट. यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स दे गेट वेस्टेड, एंड especially during this time, lot of things they go, lot of food it goes to the bin. Don't do that, please. अपना पहले से sort कर लीजिए कितने लोग हैं, कितना estimation है. अगर खाना बच जाता है, please spread it out to people who really deserve this. That's a little noble call from my side. Right now, calling in this great song, fast track song of the hour, brought to you by Self Drive. आपके साथ until 3, this is the Big Life.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

All right, time to wrap it up from my side. You have a great, great, great long break that you're getting. I hope that you are using it to the full capacity. हम भी ideas दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ ideas दे रहे हैं. Most importantly, social media आपको इतने सारे ideas देता है, तो बस उन idea को कुछ

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उही बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Say whoa!

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: What's up, everyone?

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अगर आपको भी ऐसे गाने और ऐसी वाइब अच्छी लगती है, डोंट वांट हेड टू प्लेसेस स्पेशली ओवर द लॉन्ग वीकेंड जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो, देन देयर सो मच दैट यू कैन डू हियर इन द यूएई विदाउट एनी स्ट्रेस ऑफ क्राउड्स. वी गॉट सम ब्रिलियंट माउंटेन्स हियर. यू कैन हाइक द रॉकी ट्रेल्स ऑफ द जेबल हफी डेजर्ट पार्क, एंड यहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो साइकिल, टेक अ कैमल राइड हियर इफ यू फीलिंग इंडल्जेंट. स्पेंड द नाइट अंडर द स्टार्स एंड देव गॉट सम लवली टेंट्स और अ ग्लैम्पिंग सिचुएशन हैपनिंग देयर. सो यू कैन हेड to the Jebel Hafi Desert Park if you are looking for some calm, some peaceful kind of a getaway over the long weekend. There's Alain Zoo again, perfect for kids and people who love animals. Home to around 5,000 creatures, from giraffes to camels to also petting zoos. For a slower pace, you can just head to the Alain Zoo. If you're into history or heritage, then aap recently reopened Alain Museum bhi ja sakte hain. UAE ka first museum hai ye, founded in 1969. And if you're looking for a bit of fun, then you can head to some adventure park or go by the pool sites. There's so much that you can do skipping the crowds, kyunki maximum crowd I think आने वाला है ग्लोबल विलेज इन मिरेकल गार्डन, क्योंकि ये सीजन का लास्ट वीकेंड है. सो यू कैन एक्सप्लोर द अदर ब्यूटीफुल स्टनिंग लोकेशंस हियर इन द यूएई. व्हाटएवर यू डूइंग, डू लेट अस नो एंड वी लव टू रीपोस्ट योर स्टोरीज. टैग अस 106.2 बिग एफएम ऑन इंस्टाग्राम.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: कार में इस गाने की फील ही कुछ और होती है. एंड इफ यू वंडरिंग यार गाड़ी कहां से आएगी, कहां से रेंट करूं, कार रेंटल्स आर सो एक्सपेंसिव, देन दिस इज डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल आपके चेहरे पर. sellbrive.ae हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिल्कुल सही सुना, 899 दिरहम्स अ मंथ. एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस. No ownership, no long-term commitment, no stress at all. Just pick your car and drive. That's it. Look for selfdrive.ae or download the app. It's very, very easy, hassle-free to use. Selfdrive, your car, your prize, your way.
0: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ मेरा बाय बाय कहने का टाइम, यू नो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, जब कोई इंडिया जाता है स्पेशली मेरे जान पहचान का, तो मैं मैक्सिमम उनसे दवाइयाँ मंगाती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स यू गेट मेडिसिन अ बिट चीपर देयर. कॉलीग ऑफ आर्स इज ट्रैवलिंग टू जम्मू एंड कश्मीर एंड उज्जी वॉन्ट्स हर टू ब्रिंग 1 किलो जम्मू के राजमा. It's not even funny, he's very serious about it. 1 kilo Jammu ke rajma le aana. I want to see how she reacts. And the colleague that we're talking about is technically our boss. So main dekhna chahti hu uska reaction kya hota hai when he slides into her DM after looking at her pictures. Ki please mere liye 1 kilo rajma lekar aana. मैं देखती हूँ राजमा लेकर आती है कि कुछ और लेकर आती है, इसका हाजमा बिगाड़ती आने के बाद. वेल टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. अप नेक्स्ट बॉल बाय बॉल लाइव कमेंट्री आज के आईपीएल मैच की. अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हेलो टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 विशेस ऑल इट्स लिसनर्स अ ब्लेस्ड ईद अल अधा, विशेस ऑफ पीस एंड